0: Dit is Radio SBS.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।
1: निर्धन भी है
0: जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से बस पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है 24/7, ये टेलीफोन नंबर बराबर होता है 032-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। हमारा वेबसाइट radiosbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और दुनिया के कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से ये प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

0: सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का। चले अगला भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहे।
1: अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्य बनाने वाले भगवान की समृद्धि दिलाते रहो।

गोपाल जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए अपनी बार सेन राम बरन की आवाज में ये सुंदर राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सेन रामबरन की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तारीखी नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। एक भजन प्रोग्राम में होगा और वो भी सोनू निगम की आवाज में।

और सभी सुन वालों की सेवा में। चले भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हरिओम शरण जी की ओर। बहुत सी सुन वालों होते हैं जो हरिओम शरण जी के आवास में भजन काफी पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर और अति सुंदर भजन बस हरिओम शरण जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में श्री हनुमान चालीसा पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिया भी आपने सुना। सुनने वालों घड़ी की ओर देखा जाए 11 मिनट वैदित हो चुका है सुबह 8:30। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा जो पेश किया जा रहा है अमिता बच्चन की आवाज में। जरूर आप सुनते ही रहना।

पीस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए, उनके पूरा परिवार, रिश्तेदार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन।

साहिब। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शनिवार का दिन है, 26 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है हर एक को, जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम

रहे और जरूर सुनते ही रहना। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल फोन के जरिए, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम दुनिया के कोने कोने में आप सुन सकते हैं, सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए। और हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम DAB+ रेडियो के जरिए सुनाई दे

जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम यहां से पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को शुभ वीकेंड, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप हर एक को स्वागत किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म आओ प्यार करे, आओ प्यार करे फिल्म का नाम है। 1963 का फिल्म नहीं, 1963 का फिल्म, मोहम्मद रफी एंड लता।

रेडियो SBS की जरिए मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 9:00 प्रोग्राम में 14 मिनट वेटेड हो चुका है, फिर 3 मिनटों ऊपर नहीं, काफी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, तार किया है। बहुत से सुनने वालों होते हैं जो रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, मसूद राणा प्रोग्राम में होगा, पाकिस्तानी मूवी आंसू उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, शनिचर का दिन वीकेंड है और जब भी वीकेंड आते हैं तो वीकेंड का मजा भी लेना चाहिए। और शुरुआत होते हैं रेडियो SBS का पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम से।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में पेश होगा, फिल्म बाप बेटे, उसी फिल्म का ये गाना, सोचने को लाख बातें सोचे इंसान।

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश की गई बाप बेटे फिल्म का नाम सोचने को लाख बातें सोचे इंसान। काफी खूबसूरत गाना आज की सुबह के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के जरिए पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 1957 का एक खास फिल्म अलादीन लैला, उसी फिल्म का एक गाना मोहम्मद रफी की आवाज में

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अलादीन लैला फिल्म का नाम 1957 का फिल्म 1957 का खास फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। 4 मिनट बाकी है सुबह 9:30 में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज का मौसम इस वक्त बाहर की ओर देखा जाए बादल छाया हुआ मौसम है, लेकिन मौसमी समाचार से ये खबर मिलते है कि आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है, तो जरूर वीकेंड और मौसम का मजा आप लेते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये गाना दिन अलबेले प्यार का मौसम, मन्ना डे और लता प्रोग्राम में।

और सूरज उसी फिल्म का गाना पेश की गए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का तार का नंबर टेलीफोन नंबर होता है गुनाहों का देवता फिल्म का गीत आपकी बार पेश होगा द माइटी मुकेश की आवाज में

आसरो भी थे। आप सभी सुनने वालों को पसंद आया है। माइटी मूवीज की आवाज में ये गाना गुनाहों का देवता फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आज शनिवार है और आज शनिवार सुपरमार्केटों को दवा के पास में जबरदस्त आन बीडिंग ही आन बीडिंग रखा गया है। अभी अभी खबर मिला है कि यहां पर ढेर सा सामान पर कटआउट ही आपको दिया जा रहा है, कोर्थिंग आपको दिया जा रहा है। खासतौर पर फेट्स सूर्य नाम से खुरुंत यहाँ पर अंदर जो आया है आपको सस्ती दामों में दिया जा रहा है, तो जरूर आप दरियाब कीजिए सुपरमार्केटों को दवा के पास प्रिंस बर्नार्ड प्लेन नंबर 4 और 5 तक यूट्रेख्त ज़ुइलन में जो है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर रविवार दुकान भी खुला रहता है सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक। चलिए फिल्म बरसात की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में ये गाना भी

पीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। वीकेंड है और आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को बस एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। किशोर कुमार, द मैन विद एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार शर्मिली फिल्म का नाम।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज रोमी थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म शर्मिली, उसी फिल्म का गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। उसी सुनने वालों रेडियो SBS का ऐप के जरिए ऐप कर रहे हैं कुछ नए नए लोग, नए नए सुनने वालों बस हमारा रेडियो SBS का ऐप पर आए हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। आप भी ऐप करना चाहेंगे तो जरूर अपना मोबाइल टेलीफोन पर, मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और हमारा ये प्रोग्राम अच्छी आवाज में, अच्छी साउंड में आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल फोन के जरिए। अब ऐसे स्टूडियो का तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर भी आप ऐप कर सकते हैं 0362-66-66-11। मोहम्मद रफी रातों का राजा फिल्म का नाम है, 1970 का फिल्म।

जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

रेडियो SBS की सर ये फिल्म बॉबी, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गाना भी आपने सुना। सुन वालो, शनिवार का दिन है, 26 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वीकेंड है। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। 10:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों

तो चले पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में कुछ सुनने वालों की मांगी हुई गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। डाटका नंबर है 030-2266611। इसी डाटकी नंबर पर आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं और इसी डाटकी नंबर पर आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और ऐप के जरिए भी तार कर सकते हैं। दीबन शहर के अंदर में मनोज हमारा प्रोग्राम भी फॉलो कर रहे हैं और किशोर कुमार की आवाज में एक खूबसूरत गाना बस सुनना चाहते हैं। श्रीमान फंतूस फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है किशोर कुमार की आवाज में। दीमन शहर का रहने वाला खासतौर पर मनोज ये खास गाना की गुजारिश किया है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। खासतौर पर दीवन शहर का रहने वाला, खासतौर पर मनोज का मांगी हुई गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई, बड़ी ही खूबसूरत गाना मांग किया किशोर कुमार की आवाज में जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुभ विज्ञान के साथ और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। इस वक्त भी बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। मैंने खबर किया ना कि कुछ नए नए सुनने वालों हमारा रेडियो SBS का ऐप पर आए हैं, उन लोगों को स्वागत किया जा रहा है और काफी कॉम्प्लीमेंट्स दिया है रेडियो SBS का ऐप के जरिए। पुरानी नगमे हर एक को पसंद है और इसलिए रेडियो SBS के जरिए हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक स्पेशल उन लोगों के लिए पुरानी नगमे पेश किया जा रहा है जो पुरानी नगमे काफी पसंद करते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर जो प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं और खबर किया है कि एक बड़ा गिलास एक बड़ा मोक कॉफी तैयार किया है और हमारा प्रोग्राम से मजा ही मजा लेते हैं उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर। और मुकेश का नखमे जो है काफी पसंद करते हैं तो आज के ये प्रोग्राम में ये गाना सुनना चाहते हैं।

दबाई मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर ये गाना आज के प्रोग्राम में सुनना चाहते थे और इसी तरह से मांग किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। वैसे भी हमेशा आप रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और इसी तरह से बस सुनते ही रहना। 9 मिनट बाकी है और वो भी सुबह 10:30 में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं है, मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में गाना पेश होगा हम किसी से कम नहीं। और गाना को मांग करने वाली है रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय। गीता रॉय खूबसूरत गाना आज की पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में मांग किया है, क्या हुआ तेरा वादा।

हेल मोई नंबर आई द फिल्म हम किसी से कम नहीं है। बड़ी ही खूबसूरत गाना प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म हम किसी से कम नहीं है। मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में गाना पेश की गई है और ये काफी खूबसूरत गाना मांग करने वाली टीम रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय की खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से सुनते ही रहना। एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं रोटरडम शहर की ओर। रिया जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और रिया लता जी की आवाज में गाना मांग किया है, फिल्म का नाम रखवाला, उसी फिल्म का ये गाना मेरे दिल ने जो मांगा बस मिल गया। रोटरडम शहर की रहने वाली रिया स्टूडियो की ओर तार किया, कुछ बातें हुए, हंसी मजाक हुए और ये खास गाना बस सुनना चाहते हैं।

0: रख वाला फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना अभी आपने सुना, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। रोटरडम की रहने वाली है रिया, रिया स्टूडियो की ओर तार किया और ये गाना आज की प्रोग्राम में बस मांग किया, सुनना चाहते थे और इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए पेश की गई है। शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
3: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er worden werkzaamheden uitgevoerd op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor de 5 kilometer file bij knooppunt Hoevelaken. Je vertraging is 10 minuten. En een spoedreparatie op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Die wordt uitgevoerd op knooppunt Langhorst. 5 kilometer file daar en ook 10 minuten vertraging.
3: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: Drie minuten over half elf studiotijd. 10 minuten. गुजर चुके हैं, वेट हो चुका है। सर ही 10 बजकर और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं, सुनते ही रहना। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं और वो भी रविवार 15 तारीख नवंबर। टिकट काफी जोर तोर से बिक रहा है, आपने टिकट नहीं खरीदा है और कॉन्सर्ट देखना चाहेंगे तो हम आपको सिर्फ खबर करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस वेबसाइट पर आप जाइए iStripTicket.com। उसी वेबसाइट पर टिकट आप जाकर खरीद सकते हैं। टिकट काफी जोर तोर से बिक रहा है।

15 november, 15 tarikh november, Rotterdam, Ahoy RTM stage mein. Udit Narayan aur Aditya Narayan ka live concert. Duitsland में भी हमेशा हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं जेन और मार्सेल. जेन और मार्सेल हमारा प्रोग्राम हमेशा डाउचलैंड में बस सुनते हैं, हमेशा ऐप कर रहे हैं हर सुबह. गुड मॉर्निंग होता है, गुड मॉर्निंग होता है, हेलमाल फनाइट डाउचलैंड. और हमें मालूम है जैन किशोर कुमार, द मैन विद एवरी क्वीन वॉइस, किशोर कुमार का काफी बड़ा फैन है. तो आज की ये प्रोग्राम में डाउचलैंड की रहने वाली जैन ये गाना मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी. एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है, फिल्म मेरे जीवन साथी. अगर आपने नहीं देखा है जरूर

मेरे जीवन साथी फिल्म का नाम किशोर कुमार के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए डॉयचलैंड की रहने वाली जेन ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया किशोर कुमार की आवाज में। किशोर कुमार के ये काफी बड़ा फैन है तो इसलिए आज के प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना तो फिल्म मेरे जीवन साथी उसी फिल्म का मांग किया जेन एन मार्सल अनहेल मोई वीकेंड शुभ दिन शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम डॉयचलैंड में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। देश विदेश में काफी सुनने वालों बस रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। अब ऐसे आज की प्रोग्राम में सुनने वालों बड़ी ही खूबसूरत गाने नखमे मांग किया है, एक से एक गाने जो है जो सुनने वालों आज की प्रोग्राम में मांग किया है, एक से एक सुंदर गाने खूबसूरत गाने। बस यही कहना पड़ता है कि रेडियो SBS हैव अ स्मार्ट रेडियो SBS का सुनने वालों जो है उन लोग को मालूम है कौन सा गाना मांग करना चाहिए। चले प्रोग्राम में फिल्म हवस की ओर दो रोकेडो विनाश शाह जी की आवाज में शहर की रहने वाली मीला भी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। यूत्रेक्ट शहर की रहने वाली है और मुझे मालूम है ये गाना उनको काफी पसंद है। फिल्म हवस आशा जी की आवाज में

हवस फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सब ये सुनने वालों की सेवा में। आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। उत्तराखंड शहर की रहने वाली मीला की मांगी हुई गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है आप सब ही सुनने वालों की सेवा में। तार करने के लिए शुक्रिया धन्यवाद। शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता भी पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म होने पर आ रहा है। एक गाना प्रोग्राम में मन्ना डे की आवाज में पेश होगा, नजारों में हो तुम, नजारों में हो तुम गाना का बोल है। और ये गाना स्पेशल आज के ये प्रोग्राम में मांग करने वाला है आम्स्टरडम शहर का रहने वाला हमारे सूरीनाम देश का मशहूर गाने वाला मिका सुक्खू जी। मिका सुक्खू गाना मांग किया है आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए और रेडियो SBS के लिए। तो चले मिलकर गाना सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में। स्पेशल मांग किया है आम्स्टरडम शहर का रहने वाला मिका सुक्खू आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: मन्ना डे की आवाज में गाना पेश की गए नजारों में हो तुम। आमस्टरडम शहर का रहने वाला मिका सुकु ये खास गाना स्पेशल मांग किया है आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। आंसरों मीठे गाना सुनकर और काफी पसंद किया है जो खास तौर पर मिका सुकु जी ने मांग किया। शुभ दिन शुभ वीकेंड और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आम्स्टरडम शहर की ओर हम आपको ले चलते हैं। वहां पर भी हमेशा और सालों से हमारा प्रोग्राम आंद्रे सुनते हैं और आंद्रे एक गाना मांग किया है आज शनिवार की सुबह के प्रोग्राम में। किशोर कुमार और लता जी की आवाज में गाता रहे मेरा दिल।
1: मेरा दिल
0: और आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है आम्स्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे।

0: Amsterdam शहर का रहने वाला आंद्रे का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। आसरों में थे पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। आंद्रे आपको शुभ सुबह शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है सुनते ही रहना। यहां से हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे मिलते हैं और भी कुछ मिले जुले नखमे लेकर के।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: तुम पास आए, यूं मुस्कुराए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स बड़े मियां छोटे मियां लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ एट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉर इकोनिस बॉलीवुड हिट्स प्राचीन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
2: रुक जाओ दिल दीवाने
3: संडा 15 नवंबर संडा 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय RTM स्टेज टू जनरेशंस एन पोडियम एन अनफॉरगेटेबल अवन मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Bare Mia Chote Mia live in concert Udit Narayan.

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में। बस पेश

0: लेकिन फिर भी मौसमी समाचार से खबर मिलते हैं कि धूप का मौसम भी होगा आज शनिवार का दिन। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार जो पेश किया जा रहा है दुल्हन हम ले जाएंगे, फिल्म का नाम दुल्हन हम ले जाएंगे, उसी फिल्म का ये गाना।
1: राजा प्लीज मान जाओ ना, राजा प्लीज, तू नहीं माना तो मैं चली जाऊंगी।
2: चल फोट

करिश्मा कपूर, अलका, सोनू निगम और साथियों की आवाज में गाना बस पेश की गए ओ मेरे राजा। दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2000 में रिलीज किया गया है। सुनने वालों आपको मालूम होंगे और खबर हमेशा आप सुनते हैं रिक्लाम के जरिए। उदित नारायण और आदित्य नारायण बाप और बेटे का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। बाप और बेटे का कमाल आप देखिए रोटरडम अहोय RTM स्टेज में उदित नारायण और आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। सोमवार 15 नवंबर, अपना टिकट आप खरीदिए i-tickets.com वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं। एक जबरदस्त कॉन्सर्ट होगा और ये कॉन्सर्ट हम सब मिलकर देखेंगे। उदित नारायण और आदित्य नारायण लाइव इन कॉन्सर्ट। चलिए प्रोग्राम में हम एक गाना आपको सुनाने वाले हैं बाप और बेटे की आवाज में, यानी कि उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाज में। अकेले हम अकेले तुम फिल्म का नाम, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग आप सुनते ही रहना। उदित नारायण एंड आदित्य नारायण की आवाज में

नारायण की आवाज में ये गाना पेश की गए अकेले हम अकेले तुम, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए। एक बार फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है सोमवार रविवार 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रोटरडम आहोय में। टिकट आप खरीदिए वेबसाइट i-tickets.com, उसी वेबसाइट की जरिए जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं। प्रोग्राम में उदित नारायण एक बार फिर से, और प्यार हो गया, फिल्म का नाम और प्यार हो गया।

पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में, उदित नारायण की आवाज में, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उदित नारायण की आवाज में ये गाना।

शनिवार का दिन है तो मतलब होते हैं कि लोकल टाइम का प्रोग्राम बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। इस प्रोग्राम में सिर्फ लोकल गाने हो सकता है, एक दो बैठक गाना या तो शायद कोई रिमिक्स आपके लिए पेश किया जा रहा है इस खास लोकल टाइम का प्रोग्राम में। तो चले प्रोग्राम में ना ज्यादा वक्त लेते हुए पहला लोकल गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में उमर की आवाज में पेश किया जा रहा है। उमर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार ये

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में अश्नी और साथियों की आवाज में गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर पोपो की ओर। गाना

एसबीएस के जरिए सुंदर पोपो की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में मरहूम नदीम खान और उमर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मरहूम नदीम खान और उमर और साथ ही साथ साथियों के आवास में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। जब तक चले प्रोग्राम में सागर मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आपने सुना सागर मलिक की आवाज में और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं जहां पर भी आप इस वक्त हैं। तो चले प्रोग्राम में लोकल गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्लैक बॉय मिस्टर ब्लैक की आवाज में। मिस्टर ब्लैक की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको खबर करना चाहेंगे कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11।

रानी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शेरुत्रक से हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से यह आवाज पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का लोकल टाइम का प्रोग्राम जो हमेशा बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं दुनिया की कोने कोने में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर और आपको मालूम होना चाहिए नए नए गाने हमेशा अंदर आते रहते हैं।

सुन वालों, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, नए नए गाने अंदर आते रहते हैं रेडियो SBS के पास। हर एक को मालूम है कि रेडियो SBS का प्रोग्राम बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं अच्छी साउंड में, अच्छी आवाज में, बस प्रोग्राम जो हमेशा पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं लोकल टाइम की खास प्रोग्राम में मोटी माला भोला सिंह की ओर। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है।

और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों बस खबर किया है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं रेडियो SBS का संगीत भरी स्टेशन लाइव फन आउट एट हार्ट फन नीदरलैंड फन आउट मिड नीदरलैंड फन आउट एट मोस्ट स्टार्ट

बस बीच के गए साब रोसो का संगीत पर अभी आपने सुना ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में रजेश शिवनंदन की ओर। रेडियो SBS की

Sunny Valo Harik, informatie kan je telefoonnummer 03025656560. इसी तार की नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक इन्फो लेने के लिए सालों से रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों में ठेके गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश की गई। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं जरूर है और जरूर इस प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में। अबीर की आवाज में आप सुनते ही रहना। अमित के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहे।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना। चलिए अब की बार ईबो की ओर हम आपको ले चलते हैं।

इबो की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई लोकल टाइम की प्रोग्राम में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। सुधीर प्रोग्राम में

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। हम आपको ले चलते हैं उमर की ओर और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है किस लिए मैंने प्यार किया।

की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। आसरों मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में रेमोन की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है मोहन की मुरलिया बाजे।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए। तो चलिए अब की बार ये गाना मीका सुखू और तचना की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में एक आखिरी लोकल गीत पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। आप सभी सुनने वालों को बाकी का दिन शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन जो आप सभी सुनने वालों को सेवा और खिदमत किया।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आर जे अंशली रामलाल die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met de studio naar 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे फिल्म अभिमान हसंद लता मंगेशकर, हाँ उदा फैदर मैथ द फिल्म बॉम्बे, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले।

फिल्म मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज में परम सुंदरी। और अब आप सुनिए रहना है तेरे दिल में से, सच कह रहा है।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचा कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चढ़के।

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस सॉन्ग दौर कुमार सानू एंड अलका याचनिक एंड क्वामा द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। En uit de film Ruhi komt gezongen door Sachin Jigar, Aziz Kaur en Divya Kumar. Panghat.

मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म अनारी से, दिल की नज़र से। और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज़ में फिल्म तूफान से।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्यूंकि से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनोज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ऐसा है फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gitoon Killeher via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Samchakaro, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

कुमार द फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Durva 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वास आयो द फिल्म सत्य पे सत्ता फान अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। हाँ तो फिर अगर मैं आयो द फिल्म लव यात्री इन इस प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इसके संग दर आतिफ असलम तेरा हुआ।

हाय, क्या थे वो दिन। बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामा में श्रद्धा कपूर, दिल्ली दिस गजोंग दोर तुषार जोशी, गजोंग दोर अलका याचनिक कम तुत फोहत लीजिए इन इत प्रोग्रामा गीतों के लहर। द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे, कौन क्या हुआ तुझे।